जब तुम उनके पास वापस जाओगे तो तुमसे उज्र करेंगे, तुम कहना कि उज्र मत करो, हम हरगिज तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, खुदा ने हमको तुम्हारे सब हालात बता दिए हैं और अभी खुदा और उसका रसूल तुम्हारे अमलों को और देखेंगे, फिर तुम गायब व हाजिर के जानने वाले खुदाए वाहिद की तरफ लौटाए जाओगे और जो अमल तुम करते रहे हो वो सब तुम्हें बताएगा।

और जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो लेटा और बैठा और खड़ा हर हाल में हमें पुकारता है। फिर जब हम उस तकलीफ को उससे दूर कर देते हैं तो बेलिहाज हो जाता और इस तरह गुजर जाता है कि गोया किसी तकलीफ पहुंचने पर हमें कभी पुकारा ही न था। इसी तरह हद से निकल जाने वालों को उनके आमाल आरास्ता करके दिखाए गए हैं।

0: देखो ये अपने सीनों को दोहरा करते हैं ताकि खुदा से पर्दा करें। सुन रखो, जिस वक्त ये कपड़ों में लिपट कर पड़ते हैं तब भी वो उनकी छुपी और खुली बातों को जानता है, वो तो दिलों तक की बातों से आगाह है।
1: सदकल्लाहुल अज़ीम।
2: रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए।
3: अलैका या सय्यदी।
2: यूसीपी की दुनिया के साथ तो सुनते रहिए
3: سيد الأولين والآخرين
2: FM 92.6.

आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6 आपकी समातों से टकराती ये आवाज यूसीपी की दुनिया एफएम 92.6।

0: के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: Sufi sings who? That which is, that which was, that which will be.
1: مسلمانی که داند رمز دین رو، نساید پیش غیر الله جبین رو. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین رو. این رادیو FM 92.6 است. بشنوید جهان UCP.
2: ایک نیا انداز،
3: ایک نئی سوچ،
2: एक नई पहचान,
3: एक नई लगन,
2: यूसीपी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
3: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबिल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
3: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP नंबर 1।
2: जब मिलती है लगन,
3: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
3: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया।
3: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए।

नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

जी जनाब, दोबारा वापस आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि जब मुझे ये पता लगा तो ये एक बड़ा छूता तरीकाकार था, लेकिन आप इसमें देखिए, इसमें थोड़ा सी खूबसूरती ये नजर आती है जो आजकल के आशिकों में कम कम पाई जाती है। जाहिर है टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद जमाना है, ऊपर से इंडियन फिल्मों ने, इंडियन ड्रामों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया नई नस्ल का। इसी 92.6 यूसीपी की दुनिया के चैनल के तवस्सुत से मैं अपने नौजवानों को ये भी पैगाम देना चाहूँगा, खुदारा खुदारा, इंडियंस आपको पहले अपने ड्रामों की जद में लेके आते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको अपनी तहजीब का आदि करते चले जाते हैं और आपकी सकाफत से आपको दूर ले जाते हैं। सकाफत में जब अजनबियत आ जाए, याद रखिएगा, तो वो सकाफत अपने नहीं रहती। खुदारा इस इंडियन वार से, इस इंडियन प्रोपेगेंडे से अपने आप को बचाइए, और अगर बड़े भी मेरे सुनने वालों में शामिल हैं तो अपने बच्चों को खुदारा तरीके से रोकिए। सख्ती से रोकेंगे तो वो और ये शौक परवान चढ़ेगा। मैं आपको बता रहा था, पता चला कि वो टाइमिंग्स के बारे में इस तरीके से वो पैगाम पहुंचाते थे। उसके बाद मैंने देखा, एक दिन इत्तफाक हुआ कि मैं जब उसको कहते हैं हाफ डे जुमा या हफ्ता, उस जमाने में हुआ करता था, स्कूल में हाफ डे होता था, इसको हम कहा कहते थे आधी छुट्टी सारी, यानी हाफ डे में छुट्टी होती, बहुत खुशी का दिन होता था। उस दिन हम जो लड़के वाले होते थे जल्दी छतों पे आ जाते थे दोपहर के वक्त, खासतौर पे सर्दियों में, गर्मी में तो माया आने नहीं देती थी। अक्सर कहा करती थी कि तेरा रंग जो बिल्कुल स्याह हो गया है धूप में पतंगे उड़ा उड़ा, ना जाया कर ऊपर, तेरे मुंह पे कालक लग गई है। तो हम अक्सर कहा करते थे अगर पहले ही कालक लगी हो, कि पहले ही रंग स्याह हो, तो मजीद कालक क्या लगेगी। एनीवे, माओ के नजदीक तो हर कोई, आपको पता है ना, शहजादा ही होता है, ठीक है। तो उस दिन मैं दोपहर को ही, दोपहर के आने से पहले छत पे चढ़ा तो मैंने देखा कि दोनों ने इस छत पे जो मेरे घर के करीब थी, जहाँ पे भाई साहब जो थे, कि मैं नाम बिल्कुल जिक्र नहीं करूंगा, नाम नहीं लूंगा ताकि राज में रहे, इश्तियाक रहे, तो उन्होंने अपनी दीवार पे एक बड़ा सा सफेद कागज चस्पा कर रखा था। दूसरी तरफ छत पे वो मोहतरमा भी मौजूद थी, उन्होंने भी बड़ा सा कागज चस्पा कर रखा था, यानी लगा रखा था लेवी के साथ, सुरेश के साथ, जिसको आजकल अब रूहू कहते हैं, स्टिकिंग जो होता है, फ्लूड होता है, उस पे कलम के साथ साथ बड़ी बड़ा एक पैगाम लिख रहे थे। और जाहिर है दोपहर का वक्त था, दोनों अपने हाल में मगन थे। आपको पता है इश्क ना जात देखता है, ना वक्त देखता है, ना माहौल देखता है, अपने हाल में मगन होता है। लिहाजा दोनों बड़े बड़े पैगाम लिख रहे थे। और बाद में पता चला कि क्या था, उस छत पे सफेद कागज लगा के कलम के साथ जली हरूफ में ये लिखा जाता था कि कब, किस वक्त, किस दिन, कहाँ मिलना है। और आगे से लड़की की तरफ से अगर हाँ हो जाती थी तो जो भाई साहब थे उनके वारे न्यारे, उनके बाछें खिल जाती थी, लग जाता था, हंसते थे और गुनगुनाते थे, सीटियां बजाते थे, विस्लिंग करते थे, पता लगता था कि उनको कामयाबी हो गई है। और बाद में पता चला जब हम भी थोड़े से बड़े हुए, जाहिर है हमें भी ये शौक चुराया होगा थोड़ा सा जरूर, वो तो मैं जिक्र नहीं करूंगा, जाहिर है मैं उस्ताद हूँ और जिस मकाम पे हूँ, अगर मैंने अपनी कहानी बयान करनी शुरू कर दी तो हो सकता है मुझे यहाँ से छुट्टी करा दें। लिहाजा मैं उसी पे रहूंगा कि मैं जग बीती बयान करूंगा, आप बीती बयान नहीं करूंगा, ठीक है। तो पता चला जनाब कजन से, मल्लेदारों से, दुकानदारों से कि जी वो कहाँ मिलते थे, सबसे बड़ी जो मीटिंग ग्राउंड होती थी ना, मीटिंग प्लेस होता था, जो जाए मुलाकात होती थी, वो लाहौर का बागे जिना या शालामार बाग, क्योंकि अंदरूने शहर के रहने वालों से बागे जिना, जिसको लॉरेंस गार्डन भी कहते हैं, वो नजदीक था, इसलिए ज्यादा वहाँ जाके मिला करते। और बड़े बड़े कहते हैं खूबसूरत तहाइफ के तबादले भी होते थे। तहाइफ के तबादले क्या है, चले आपको भी दो तीन बताता चलूं, इसमें भी एक प्रोग्राम हो सकता है अलग से, कहाँ कहाँ मैं आपको बयान करूँ। दरून लाहौर की कहानियाँ इतनी ज्यादा है कि शायद मेरी उम्र कम पड़ जाए और ये मौजूद खत्म ना हो पाए। सो जनाब, मेरे रिकॉर्डर ने भी, जाहिर है मेरा रिमोट उनके हाथ में, उन्होंने मुझे कहा, और वाकई आपको पता है जैसे हम एक और प्रोग्राम भी करते हैं, मैं और वो जरानी बच्ची जो है नूर फातिमा, उसमें भी हम कहा करते हैं कि जब तक ये पूरा अमला, ये लोग ना हो और साथ इनके जो ऊपर दीन हैं, इनका अगर तावुन हासिल ना हो, इनका अगर मुस्बत इशारा ना हमें मयसर हो, तो ये प्रोग्राम कभी हवा की लहरों की जीनत बन ही नहीं सकता। लिहाजा मैं, समझिएगा, इसको यही इख्तिताम करते हैं। मकसद यही है कि आप आगे अंदाजा लगाइए कि बाज वाकयात में, बाज सिलसिलों में ये जो छत का इश्क था वो शादी पे भी मुंतज होता था। दोनों के खानदान आपस में मिलके
फैसला करते थे और दोनों मिल भी जाते थे। ये जो है सिलसिला, ये पहला मौजू, ये खत्म होता है। दूसरा मौजू फिर हम बयान करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।

0: इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन एंड न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस।

गम तो मेरा सफर भी हम सफर भी हर कदम तू बारिशों में हम देखा तुझे आंख नहीं जिस दम भीगी।

सुरौर तान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: हैं, तो वो फिर मैंने दे दिए टॉफल और जीआरई, पास हो गया और फिर अप्लाई कर दिया फुल ब्राइट के लिए। तो इस तरह से फुल ब्राइट मिल गया। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि अगर इंसान नियत कर ले, जज्बा उसके अंदर हो और उम्मीद का दामन ना छोड़े, तो वो कुछ भी कर सकता है। और इसी चीज़ की आज पाकिस्तान के आवाम को, हमारे नौजवानों को जो बहुत मायूस हैं तालीमी निज़ाम से, और महसूस होता है कि वो समझते हैं कि यूट्यूब और टिकटॉक और स्नैपचैट देखने से ज़्यादा कामयाबी या तरक्की होती है। मेरा ख्याल में हमें उन चीज़ों से निकल कर तालीम की तरफ आना चाहिए, तहकीक की तरफ आना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि तालीम और तहकीक ने तरक्की याफ्ता ममालिक को किस तरह से तरक्की याफ्ता बनाया है।
1: बहुत अच्छे सर। और सर आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह अभी आपकी क्वालिफिकेशन सुन के मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हुई हूँ, तो आपका फर्स्ट टाइम ये आपका साइंस की तरफ रुझान, और स्पेशली जैसे आपने दो एमफिल का जिक्र किया कि आपने यही फार्मा फील्ड के अंदर किए हुए, तो ये फार्मास्यूटिकल साइंसिस के अंदर आपका रुझान कैसे पैदा हुआ और किस तरीके से आपका मतलब ये आपने कैसे ये चूज़ की
0: ये
1: फील्ड?
0: दास्तान तकरीबन तमाम फार्मासिस्टों की है। या हम जब पैदा होते हैं, हमारा कल्चर ऐसा है कि दो ही प्रोफेशन चूँकि याद है हमें, या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो और हम बचपन में से सुनते आए कि बड़े होके क्या बनोगे, डॉक्टर बनेंगे, कोई कहेगा मैं इंजीनियर बनूंगा। तो हम भी इसी तरह से FSC प्री मेडिकल कर लिया। अब FSC प्री मेडिकल कर लिया तो फिर वो एंट्री टेस्ट में भी वो का एक डंडा था, वो भी गुजार लिया। तो MBBS में तो दाखिला हुआ नहीं, वो इतने लायक तो थे नहीं। तो बाद में फिर दूसरा जो ऑप्शन मिला तो वो फार्मेसी का था। लेकिन जब फार्मेसी में पहुंचे तो अल्लाह की करनी हुई कि अच्छे उस्ताद मिल गए, और उन उस्तादों की वजह से, और फिर दूसरा एक और भी था कि मौका मिला अच्छे स्कूलों के तलबा को पढ़ाने का, जैसे HSN कॉलेज के तलबा को पढ़ाने का, शोएफात के तलबा को पढ़ाने का। तो पता चला कि वो लोग जो पढ़ते हैं ओ लेवल्स, ए लेवल्स, और वो जिस तरह से कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हैं, तो उस तरह उससे फिर अपनी किताबें पढ़ने का भी शौक पैदा हो गया। जैसे फिजियोलॉजी गाइटन की पढ़ी तो मज़ा आया, बायोकेमिस्ट्री पढ़ी हार्पर की तो मज़ा आया। तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्यूरोसिटी पैदा होना शुरू हो गई, और फिर थोड़ा सा सोशल भी थे और किताबें पढ़ने का शौक भी था, और दोस्त भी ऐसे मिल गए जो किताबें भी पढ़ते थे और किताबों से मजाक करते थे, तो जिसकी वजह से उस तरफ जाना शुरू हुआ। और फिर जैसे जैसे तरक्की करते रहे, मतलब ये लगता था मुझको कि मैं मुश्किल मुश्किल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आसान करके बता सकता हूँ। तो दौरान तालिब इल्मी ही पहले दूसरे तीसरे साल में ही तो मैं जो पढ़ता था वो अपने दोस्तों को पढ़ा देता था, उनको भी खुशी होती थी, मुझे भी खुशी होती थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं उस्ताद ही बनूंगा, तो मैं प्रोफेसर बना या टीचिंग भी आया। तो उसका वो इसलिए नहीं आया कि मुझे टीचिंग करनी थी, शौक था मेरा, पैशन था कि अच्छा उस्ताद बनना है, लोगों के अंदर होप पैदा करनी है, जो कुछ खुद सीख रहा हूँ वो दूसरों को सिखाना है।
1: जी। तो डॉक्टर इमरान, अभी आपने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का जिक्र किया, जैसे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप अमेरिका की एक बहुत फेमस स्कॉलरशिप भी है, बहुत से हमारे स्टूडेंट्स का ख्वाब भी होगा इसको विन करने के लिए। तो जब आपने ये स्कॉलरशिप विन की तो आपका क्या रद्द अमल था, फर्स्ट एक्सप्रेशन, मतलब आप कैसा फील कर रहे थे?
0: मैं ईमानदारी की बात है कि मैं एप्लीकेशन दे के तो भूल गया था कि मैंने एप्लीकेशन दी भी हुई है। और फिर एक दफ़ा कॉल आई इस्लामाबाद से कि जी आप शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। मैंने कहा जी बात है। और फिर दोस्त को फ़ोन किया कि यार इस्लामाबाद में इंटरव्यू है, तो चले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें मेरी मेहनत से ज़्यादा लक और माँ बाप की दुआएं ज़्यादा काम आई। एक्सप्रेशंस ये थे कि मैं अच्छा लगा, बड़ा मतलब खुशी हुई कि चलो इसी बहाने अमरीका दोबारा मुफ्त तालीम हासिल करने चले जाएंगे। अब जो अमूमन हमारे तालिबे इल्म हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि जी हमने भी स्कॉलरशिप लेना है, तो मैं ये कहता हूँ कि स्कॉलरशिप लेने के लिए पहले स्कॉलर बनो। तो हम बगैर स्कॉलर बने स्कॉलरशिप नहीं ले सकते। तो स्कॉलर का ताल्लुक पढ़ने से है, तो इधर तो मुहावरा बने सानू पढ़ नहीं पा देता है। जो तो पढ़ना जो है वो मुश्किल लगेगा और पढ़ना एक मनफी असर देगा, तो वो फिर उस तरह से हमारा जोक नहीं पैदा होगा। तो वो चूंकि पढ़ने लिखने का पहले से शगफ था, और अच्छी चीज जो थी जिसको मैं अपने अब कहता हूँ ब्लेसिंग इन डिसगाइज है, कि जब हम पढ़ रहे थे तो मोबाइल फोन हमारे पास नहीं था, तो फिर या तो हम क्रिकेट खेल सकते थे, या फिर हम कमरे में बैठ के बातें कर सकते थे, या फिर कोई अलहदा बैठ के किताब पढ़ लेते थे। तो ये चीज हमारे तलबा को जो आजकल है उनको चाहिए है कि वो कुतुबबीनी की तरफ या पढ़ने की तरफ और समझने की तरफ, और अगर पढ़ नहीं सकते तो अब सुनने की भी काफी ज्यादा मौके मौजूद है। जैसे आपके पास 92.6 FM के जरिए से आप सुन सकते हैं, तो आप इस तरह के प्रोग्राम सुने, ऐसे लोगों को सुने, तो यकीनन आपकी सोच बदल जाएगी।
1: जी डॉक्टर इमरान, अभी जैसे आप अपनी स्कॉलरशिप के बारे में बता रहे थे, और इसी को ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि नेक्स्ट आपको किन किन हर्डल्स को फेस करना पड़ा, क्या चैलेंजेस थे जिनको आपने फेस किया। जी सामीन, और इसके साथ ही हम एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, लेट्स टेक अ ब्रेक। आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: जी सामीन, वेलकम बैक. और आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया. और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे सर के फुल ब्राइट स्कॉलरशिप विन करने के लिए, और पाकिस्तान में रहते हुए जिन जिन चैलेंजेस का फेस करना पड़ा इनको, अभी हम उसके बारे में इनसे पूछेंगे. कि डॉक्टर इमरान, आपको पाकिस्तान में, आपको पता है, बहुत सी हर्डल्स, जब भी हम किसी अच्छे काम की तरफ निकलते हैं बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. तो पाकिस्तान में आपको किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ा और आपने उनको कैसे कॉप अप किया?
4: मेरा ख्याल है कि पूरी दुनिया की बात करनी चाहिए, पाकिस्तान की नहीं बात करनी चाहिए. इंसान जहाँ पर भी पैदा हुआ है उसको चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है. और हम तो बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारे आबाओ अजदाद ने हमारे से ज़्यादा चैलेंजेस सहे थे और उन्होंने ज़्यादा तकलीफें सही. तो वह इमाम इकबाल जैसे कहता है, खुदा तुम्हें किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस तरह नहीं. तो इस तरह से अल्लाह ताला ने वो मौजें जो पैदा की है तो वो हमें मजबूत करने के लिए आती हैं. तो अगर हम सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव प्रॉब्लम्स के और चैलेंजेस के मुतालिक बदल लें कि ये जो चैलेंज है, अगर मैं वजन नहीं उठाऊंगा तो मेरा जिस्म नहीं बनेगा. तो अगर हम चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी समझें तो हम ग्रो करते हैं, होप पैदा होती है और नेवर गिव अप की एक फिजा पैदा हो जाती है. और उसमें मेरा ख्याल, अगेन उसी बात पे मैं ज़्यादा एम्फोसाइज करूँगा, जोर डालूंगा कि अपने दोस्त अच्छे करें. अगर आप अपने अच्छे दोस्त करेंगे, अच्छे लोगों को सुनेंगे, FM 92.6 को सुनेंगे, तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी. या फैकल्टी आवर को कम लोग ही देखते हैं, इसलिए देखते हैं कि यह फैकल्टी ने बात करनी है. लेकिन अगर हम सुनना चाहें तो ऐसे प्रोग्राम भी सुन सकते हैं. और प्रोफेसर और पढ़े लिखे लोग इतने बोरिंग भी नहीं होते जितना हमने बना दिया है.
3: जी डॉक्टर इमरान, नहीं नहीं, अब हमारा फैकल्टी आवर माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल जा रहा है और बहुत से लोग इसे सुनते हैं, बहुत सी उनकी राय भी हमें मिलती रहती है और हम उनके सजेशन को लेते हैं पॉजिटिवली भी, और उनको मजीद भी बहुत सी इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं. अभी तो लोगों को बहुत इंतज़ार होता है इस फैकल्टी आवर का. तो अभी जो आप ये कह रहे हैं कि बहुत कम सुनते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी बहुत इम्प्रूव हो गया हुआ है.
4: तो थैंक यू. तो आपका जो सवाल था मुझे अच्छा लगा कि चैलेंजेस, अगर मैं वैसे इस चीज़ को अगर सही तरह से कहूँ तो चैलेंजेस ही इंसान को आगे बढ़ाते हैं. और अगर हमने अपनी ज़िंदगी को ज़ाया करना हो तो कंफर्टेबल लाइफ गुजारना शुरू कर दें. वो बच्चे जो हर तरह के कंफर्ट में रहते हैं, पैम्पर्ड होते हैं, एसी वाले कमरे में बैठे हुए हैं हर टाइम, वो चाहते हैं कि वो उनकी पूरी दुनिया उनकी खिदमत के लिए मामूर हो जाए, तो वो कुछ खास काम नहीं कर पाते हैं. जितनी भी ज़िंदगी में या दुनिया में तारीख में बड़ी शख्सियात पैदा हुई हैं या उन्होंने कोशिश की है, वो हमेशा चैलेंजेस की वजह से ही उभरे हैं. और मेरा अपना ख्याल है कि हमारे तलबा को जो पढ़ रही है तालीम के अंदर, उनको वो छोटे छोटे मसाइल को हमने बहुत बड़ा बना दिया हुआ है. और उसकी वजह ये भी है कि हर बंदा कंप्लेन कर रहा है, हर बंदा क्रिटिसाइज कर रहा है, हर बंदा ब्लेम कर रहा है. तो कंप्लेंट, बेशक मैं अक्सर क्लासों में भी कहता हूँ, तस्बीह भी पढ़ना शुरू कर दोगे कंप्लेंट्स की तो कंप्लेंट करने से मसला हल नहीं होगा, मसले को हल करने से मसला हल होगा और सोचने से मसला हल होगा, जैसे रट्टा जो है उससे बाहर निकलने से मसला हल होगा, और ये जानने से मसला हल होगा कि तरक्की याफ्ता ममालिक कैसे तरक्की याफ्ता हो गए. थोड़ा सा उसके बारे में गौर करेंगे, ये सवाल करेंगे कि वो भी, ये पिछले 200-250 साल की कहानी है, 200-250 साल की कहानी कहीं कॉस्मोस देख लें, नील डिग्रेसे टाइसन का. अब तो हिंदी जबान में भी है, उर्दू जबान में भी है, और AI का दौर आ गया है, कुछ भी जानना चाहें तो आप सीख सकते हैं. लेकिन उसके लिए चाहिए यही है कि चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी समझें, प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी समझें और मेहनत करें.
3: जी डॉक्टर इमरान, तो सर थोड़ा सा हम आप हमारे स्टूडेंट्स के लिए और हमारे सामीन के बताएं कि जब आप अमेरिका से वापस पाकिस्तान आए तो आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी थिंकिंग में, आपके विजन में क्या चेंज आया, और आपने यहाँ पाकिस्तान में आके क्या आपने चेंज क्या लेके आए?
4: मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, अगरचे बहुत सारे लोग मगरब नवाज हो चुके हैं, वो दूर के ढोल सुहाने हैं, वो ये समझते हैं कि शायद अमेरिका जाने के बाद डॉलरों की बरसात हो जाएगी और ज़िंदगी जो है वो बहुत अच्छी, वो दूर से नज़र आता है. लेकिन वहाँ पर मेरा ख्याल है लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम इतनी मेहनत नहीं करते हैं पाकिस्तान में. वहाँ पर जो आम आवाम है हमारे जैसे, वो ज़्यादातर वक्त और अपने काम को काम समझते हैं और वो काम को काम करवाया भी जाता है, मजाक भी करते हैं, खेलते कूदते भी हैं, लेकिन काम को काम समझते हैं. हमने काम को भी खेल कूद बना दिया है, और खेल कूद तो पहले से ही खेल कूद है. तो और ये जो एक चेंज थोड़ा सा आता है, और कल्चरल शॉक लगता है, ये कुदरती बात है. जब मैं वापस आया तो वहाँ पर ज़्यादातर काम ईमेल के ज़रिए से होता था, गुफ्तगु, लोगों के पास वक्त नहीं होता है ज़्यादा बैठ के गप्पे मारने का, क्योंकि काम के ऊपर ज़्यादा उनका फोकस होता है. सरमायादाराना निज़ाम है, उसको समझना चाहिए. पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नौजवान मौजूद है. पाकिस्तान की आबादी 23 साल से नीचे तकरीबन 12 करोड़ है. तो 12 करोड़ बच्चे हमारे पास हैं। इन 12 करोड़ बच्चों को अगर हम सही तरह से इस्तेमाल करें, इस्तेमाल करने से मुराद इनको ट्रेन करें, इनकी तरबियत करें, तो हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हमारे हमसायों वाले इंडिया और चाइना, वो इसी चीज को देखकर उन्होंने भी यही काम किया। वहां पर कुछ लोग पहले पढ़ने गए और फिर वापस आए और उन्होंने देखा कि हमारे मुल्क में ये चीजें बेहतर की जा सकती हैं, तो उन्होंने बेहतर की। और मैं उस तरह से सोचता हूँ, और वहाँ के जो चैलेंजेस हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे मुल्क में वैसे चैलेंजेस नहीं है, जैसे कि ड्रग्स का बहुत बड़ा मसला है वहाँ पर, और इसके अलावा दूसरी चीज़ें जो कि इतनी हमारे मजहब के हवाले से या हमारा जो ब्रॉटअप हुआ उसके हवाले से इतनी अफोर्डेबल नहीं है। वहाँ पर आप अपनी औलाद को रेज करना नहीं चाहेंगे कम्फर्टेबली, क्योंकि हमारी कुछ अपनी वैल्यूज हैं, उनकी अपनी वैल्यूज हैं। तो ये एक चीज़ है जो कि इस जिस वजह से मुझे पाकिस्तान अच्छा लगता है। चैलेंजेस वो पहले भी पाकिस्तान वैसा ही था, अब भी वैसा ही है, और मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान काफी तेजी से तब्दील हो रहा है। अवेयरनेस ज्यादा आ रही है, लोगों को आगाही ज्यादा मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज के बारे में ज्यादा पता चल रहा है, और अपॉर्चुनिटीज दस्तरस में है जो चाहता है, और जो नहीं चाहता है तो उसके लिए कभी भी अपॉर्चुनिटीज थी नहीं।
3: जी डॉक्टर इमरान, तो आप हमारी जो पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि माशाल्लाह आपका काफ़ी विजन भी है, इंटरनेशनली भी आपने सारा विजिट किया और काफ़ी क्लोजली आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, तो हमारी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ को स्पेशली हमारे यहाँ यूसीपी में क्या ऐसी चीज़ें हैं, किन पैरामीटर्स को आपको फौरन जो अडॉप्ट करने की हमें ज़रूरत है, इस पर थोड़ी रोशनी।
4: अभी जो यूसीपी की रीसेंट लीडरशिप है, वो खुद भी फुल फाइटर हैं, वो भी दुनिया देखा है, और जिस तरह से वो चीज़ों को चला रहे हैं, और उनका एम्फोसिस जो है वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ है, क्रिएटिविटी की तरफ है, इनोवेशन की तरफ है, अंडरग्रेड प्रोग्राम्स को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ है, तो यूसीपी ऑलरेडी एक रोल मॉडल बना हुआ है दूसरी लाहौर की यूनिवर्सिटियों के लिए। और यहाँ पर जो कुछ हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर परफेक्ट है, यहाँ पर चैलेंजेस नहीं है, यहाँ पर भी हैं और हर जगह पर होते हैं। इवन बेहतरीन से बेहतरीन इदारों में भी हमें लगता है कि कोई मसला नहीं होगा, लेकिन जब जहाँ जहाँ इंसान है वहाँ वहाँ मसला होगा, और इंसान को पैदा इसलिए किया गया कि उन मसलों को हल करे, ना कि मसलों का अवेला करे। यूनिवर्सिटीज को ये अडॉप्ट करना चाहिए कि हमें रटे से बाहर निकलना चाहिए, और जब जिंदगी में रियल लाइफ में अगर मिसाल के तौर पर मैं घर जाता हूँ और यूपीएस खराब हो जाता है, तो वो एमसीक्यू नहीं बनेगा कि बताइए कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, वो तो कहेगा भाई मुझे बत्ती लाकर दो, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जब हमें ऐसा आम जिंदगी में जिस तरह से सवाल आता है, तो वो सवाल जो है वो कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं होता कि इसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स करना है, इसका ट्रू फॉल्स करना है, या फिर इसका एमसीक्यू बनाना है, या इसका पैटर्न हमें पता चले। तो इसी तरह से अगर हम अपने मसाइल को देखें तो, और अपने तालीमी निज़ाम को देखें कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका रियल वर्ल्ड में क्या एप्लीकेशन है, चाहे मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं लॉ पढ़ रहा हूँ, चाहे मैं फार्मेसी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये जानना है कि ये जो मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ इसका आम लोगों को या मुझे अपनी जात को किस तरह से फायदा हो सकता है। तो उससे फिर आपका इंटरेस्ट भी पैदा होगा, और ये चीज तमाम तालीमी इदारों को करने की जरूरत है, जिसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, और ऑलरेडी हो रही है, लेकिन वो उन खास मखसूस तबकात के अंदर हो रही है। जैसे अगर हम पाकिस्तान के जो स्नोबिश इदारे हैं जो काफी महंगे महंगे हैं, जिसमें साल की 10 लाख रुपए फीस है, वो यूसीपी एक अच्छा काम ये कर रही है। अमूमन लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को ब्लेम करते हैं कि ये बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है कि इन्होंने हमारी यूथ को एक जगह पर कम से कम बिठा तो दी है। अगर ये भी ना होती तो पब्लिक सेक्टर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इन बच्चों को संभाल सकता। अब चूंकि ये बच्चे आ चुके हैं, तो अब हमें ये चाहिए कि इन बच्चों को नई राह दिखाएं, नई उम्मीद पैदा करें इनके अंदर, और ये दिखाएं कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। किसी भी शोबे में चले जाएं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री देखें तो हमारे पास सिर्फ 700 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, 25 करोड़ आबादी के लिए 700 इंडस्ट्री है, जबकि ये नंबर इजीली बढ़ाया जा सकता है और हम इसको 5,000-6,000 पे भी लेके जा सकते हैं। वो कैसे लेके जा सकते हैं, जब हमारे फार्मासिस्ट उस समय रिटेन होंगे और ये सोचेंगे कि हमने सिर्फ दवाई जो है ना सिर्फ अपने मुल्कों को, अपने मुल्क के बाशियों को देनी है, बल्कि साथ में नेबरिंग कंट्रीज को भी देनी है, सायों वाले को भी देनी है। तो उस तरह से अगर हम सोचेंगे कि जॉब करने के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि इस तरह से पढ़ना है कि हमने जॉब क्रिएट करनी है, फिर ज्यादा फायदा होगा, मेरा यही ख्याल है।
3: जी डॉक्टर इमरान, अभी जैसे आपने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ की बात की, तो अभी क्योंकि एक टाइम होता है हमारी एक शॉर्ट सी ब्रेक है, और इसके वापस आके हम इंशाल्लाह यहीं से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या रोल प्ले कर रही हैं और उनकी क्या क्या हैं सारी चीज़ें। जी सामीन, कीप लिसनिंग FM 92.6 एंड लेट्स टेक अ ब्रेक।

0: 24/7 only on FM 92.6 UCP ki duniya.
1: ویلکم بیک سامعین, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا. تو جی ڈاکٹر عمران, آپ سے ہماری بات چل رہی تھی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کے حوالے سے. تو پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو بایو ٹیک مینوفیکچرنگ انڈسٹریز ہیں, آپ ان کو کہاں پہ دیکھتے ہیں, کیا ان کا اسکوپ ہے, کس طریقے سے, اور یہ کتنا کو کام کر رہی ہیں؟ پاکستان میں کتنی بایو ٹیک پروڈکٹس ہیں جو ہم پروڈیوس کر رہے ہیں, مینوفیکچر کر رہے ہیں؟
2: تھینک یو میڈم تحسین, اچھا سوال ہے. پاکستان میں ہر جگہ پر اپرچونیٹی ہی اپرچونیٹی ہے. ہم اپنے حفاظتی ٹیکے ابھی تک خود نہیں بنا سکے. ہم بایو ٹیک, جس کو ہم ویکسینیشنز کہتے ہیں, ہم امپورٹ کرتے ہیں. تو اتنی زیادہ جگہ ہے کام کرنے کے لیے, اور جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کو اسی طرف دیکھنا چاہیے کہ یہ ایوینیوز ہیں جن میں ہم تحقیق کر کے اور انویسٹمنٹس لا سکتے ہیں. لیکن ہمیں ابھی یہ سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح سے ہم انویسٹمنٹ کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اس انڈسٹری کی وجہ سے دوسری دنیا کے ممالک کتنا پیسہ بنا رہے ہیں, اور یہی ہمارا فیوچر ہے. ابھی جیسے بایو ٹیکنالوجی کے اندر بھی بہت سارے پروگرامز ہیں, اور فارماسیوٹکس, جو فارماسیوٹیکل سائنسز جو ہے, یہ خود بخود ایک پوری دنیا میں 2004 سے پہلے فارماسیوٹیکل انڈسٹری نمبر ایک پہ تھی, اور پھر آئی ٹی کے بعد یہ ابھی آج بھی نمبر دو پہ ہے. پاکستان میں بہت زیادہ اپرچونیٹی ہے اس حوالے سے. ابھی ویسے کوئی نہیں ہے, بہت کم ہیں, شاید انگلی پہ گنی جا سکتی ہیں جو انڈسٹریز ہیں, اور وہ بھی را مٹیریل جو ہے وہ امپورٹ کرتی ہیں اور اس کو پیکج کر کے آگے ڈسٹریبیوٹ کرتی ہیں. جو انڈسٹری کے اندر بیٹھے ہوئے, اگر میں انڈسٹری کے پرسپیکٹو سے دیکھوں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بندہ دیں جو کام کا ہو, اور وہ کام کا بندہ اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہم تعلیمی اداروں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں یا تعلیمی اداروں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو وہاں پر ہمارا زیادہ فوکس گریڈز کے اوپر ہوتا ہے, زیادہ فوکس جی پی اے لینے پہ ہوتا ہے, اور سیکھنے کے اوپر اور ریئل ورلڈ کے پرابلمس کو سالو کرنے کے اوپر نہیں ہوتا. پاکستان میں بہت زیادہ گنجائش ہے نئی فارماسیوٹیکل انڈسٹری بنانے کی, ادویات نئی سے نئی بنانے کی, اور پھر ان کے بعد ان کو پاکستان میں سستے داموں بیچنے کی, اور اس کے علاوہ باہر کے ممالک میں اس کو ایکسپورٹ کرنے کی. میرا یہ اپنا نظریہ ہے, اور میرا امید ہے مجھے کہ بہت زیادہ لوگ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں, جیسے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی, اس میڈا. بہت کم لوگ, شاید پاکستان کے پڑھے لکھے لوگ بھی بہت کم لوگ جانتے ہیں, اس طرح سے ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان ہے, ٹی ڈیپ, اور پھر ایچ ای سی جو کام کر رہی ہے اس وقت, ہائر ایجوکیشن کمیشن, وہ بھی اسی طرف جا رہی ہے کہ ہمیں مینوفیکچرنگ کی طرف آنا پڑے گا, ہمیں کچھ نہ کچھ بنا کر دنیا کو دینا پڑے گا, اور ہم زیادہ دیر تک قرضوں پر نہیں چل سکیں گے. ہمیں اب خود سے کچھ بنانا پڑے گا, اور بنا کر دنیا کو اور اپنے پاکستانی جو دوست, یعنی کہ جو پاکستانی عوام ہے, ان کو دینا پڑے گا.
1: جی بالکل ڈاکٹر عمران, ابھی جیسے ابھی ہم نے بات کی اسٹوڈنٹس کی بھی, اور یہ کہ ہم اپنی ایک ٹپیکل ایک تھیوریٹیکل نالج کو ہم کمرشلائز یا ہم انڈسٹری کی طرف کیسے لے کے جا سکتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہمارے جیسے اب یو سی پی سے ہم خود ایک فیکلٹی آف فارماسیوٹیکل سائنسز سے بلانگ کرتے ہیں, تو ہم فیسلٹی وائز تو کافی اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں, ان کو فیسلیٹیٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی سم ٹائم اسٹوڈنٹس میں ایک فیئر ہوتا ہے ریسرچ کو لے کے, کہ وہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ریسرچ آتی نہیں ہے, یا ہم ریسرچ کیسے کریں, اسٹارٹ کیسے کریں. تو اسپیشلی انڈر گریڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو ان کی آپ کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں, ان کو کیسے آپ گائڈ کر سکتے ہیں؟
2: پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو لفظ ہے, لفظوں کے اندر, لفظوں سے باہر نکلنا پڑے گا. اب ریسرچ کا نام ذہن میں آتے ہی ہمیں آئنسٹائن یاد آ جاتا ہے یا نیوٹن یاد آ جاتا ہے, حالانکہ ریسرچ ایسے نہیں, ہر بندہ ریسرچ کر رہا ہے, ہر دن ریسرچ کر رہا ہے. ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں, کوئی چیز خریدتے ہیں, تو ریسرچ کرتے ہیں, تو چیز خریدتے ہیں. جوتی بھی خریدنی ہو تو پہلے 10 جوتیاں دیکھتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کہ بھائی کون سی جوتی پہنی اور کون سی نہیں پہنی. اسی کو تحقیق کہتے ہیں. اب اگر اسی یہ تحقیق جو ہے وہ ہم ہر گھر ہر فیصلے میں کر رہے ہوتے ہیں, ہم نے اگر کہیں سفر کرنا ہو تو ہم تحقیق کرتے ہیں کہ کون سی جگہ پہ سستی مل جائے گی چیز, کون سی ایئر لائن پہ سستی چیز مل جائے گی, نمبرز جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی یہاں پر کیا چیز ہوگی, وہاں پر کیا چیز ہوگی. اسی چیز کو جب ہم علمی طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کو بھی ریسرچ ہی کہتے ہیں. لیکن ہم نے ریسرچ کو ایک پیپر چھاپنے کا ذریعہ بنا دیا ہے, جو کہ ٹھیک ہے, اس کی بھی ضرورت ہے, لیکن زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ جو پرچہ ہم لکھ رہے ہیں یا جو ہم تحقیق کرنے کے بعد پرچہ لکھ رہے ہیں, اس کا عملی زندگی میں انڈسٹری کو, صنعت کو کیا فائدہ ہوگا, اور اس طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے. اور جو تحقیق کو سمجھانے کی ضرورت ہے ہمارے بچوں کو, کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ بہت مشکل کام ہے, تحقیق ہر کوئی کر رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ہم کیوریس ہی پیدا ہو گئے ہیں. کسی بھی بچے کو میرا نہیں خیال کہ کہا گیا ہو کہ سوال پوچھ جب وہ پیدا ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ جب وہ تعلیمی نظام میں آتا ہے تو اس کے سارے سوال ختم ہو جاتے ہیں. तो हमारा काम एज ए रिसर्चर ये है कि उनके अंदर वो दोबारा से जस्तजू पैदा की जाए, क्यूरोसिटी पैदा की जाए और वो देखें कि दुनिया कैसे चल रही है और उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करें, उन मालूमात से फिर किसी मेंटोर के साथ जो कि पहले से तहकीक कर रहा है उसके साथ जुड़ा जाए। और पाकिस्तान हमारी फैकल्टी फार्मास्यूटिकल साइंसेज हवाले से मुनफरिद फैकल्टी है पूरे लाहौर के अंदर के, यहाँ पर सबसे ज़्यादा PhDs हैं इस फैकल्टी के अंदर, और इसके अलावा हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी है हमारी। हर बंदा जो है वो बहुत काबिल है और बाहर से पढ़ गया है, कोई अमेरिका से पढ़ के आया, कोई जर्मनी से पढ़ के आया, कोई फ्रांस से पढ़ के आया, कोई चाइना से पढ़ के आया। तो तलबा को चाहिए है, और तलबा हम कर भी रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन इवेंट करवा रहे होते हैं, अवेयरनेस दे रहे होते हैं। अब स्टूडेंट के अंदर जो डर है उसको ख़त्म करने के लिए इस तरह के जो सेशंस हैं वो हम करने चाहिए हैं और उनको बताना चाहिए। अब हमारे थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स भी जो है वो रिसर्च कर रहे हैं, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स भी रिसर्च कर रहे हैं और उनको सिखाया जा रहा है समर रिसर्च प्रोग्राम के जरिए से कि किस तरह से तहकीक जो है वो अमली ज़िंदगी में फ़ायदा देती है। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तहकीक ही करके कोई फैसला लेते हैं, और इवन हमारे जो गवर्नमेंट्स होती हैं वो भी तहकीक करके ही फैसला करती हैं। तो इस जगह पर भी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि हमारे पास डेटा इकट्ठा हो और वो डेटा जो है उसकी बुनियाद पर हम फैसला साजी करें।
1: जी सर, तो अभी आजकल जैसे आपको पता है कि AI का ज़माना है, अभी आपने मेंटोरिंग की भी बात की कि मेंटोर्स होने चाहिए, तो आप अपनी जो स्टडीज़ के अंदर, आप अपनी क्लास के अंदर या आप अपने स्टूडेंट्स को कैसे AI के लिए या कोई ग्लोबलाइजेशन जो मॉडल्स जो हैं उनको कैसे इस्तेमाल करना सिखा सकते हैं या उनको गाइड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं?
2: मतलब सबसे पहले तो एक टूल आ गया, टूल है, जैसे आप ये समझे कि कैलकुलेटर आया तो वो एक टूल था, अब वो कैलकुलेटर तरक्की करता करता कंप्यूटर बना, कंप्यूटर बनने के बाद फिर अब इंटरनेट भी आ गया। इंटरनेट 1995 में आया लेकिन आवाम ने उसको सीखना शुरू किया 2010 2012 में 2015 में, और अब तकरीबन हर छोटे से छोटा बंदा भी है वो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। अभी एक नई चीज़ आ गई जिसको AI कहते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि AI शायद उसको 30 साल नहीं लगेंगे पेनिट्रेट करने में, तमाम लोगों को इस्तेमाल, हर बंदे के इस्तेमाल में आ जाएगी शायद 3-4 या 5 साल के अंदर। और उसका फ़ायदा ये है कि अब इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है, मालूमात बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन मालूमात से मानी अखज़ करना ये हमारा काम है। मैं अपनी क्लासेस में क्या करता हूँ कि इन टूल से आशना करवाता हूँ, मतलब जैसे जेमिनी है उसके बारे में बताया और फिर प्रैक्टिस करके दिखाया कि देखो बेटा ये ऐसे हो रहा है, तो जब वो देखते हैं तो वो खुद क्यूरियस होते हैं और वो फिर ना सिर्फ मेरी ही क्लास के मुतालिक वो चीज़ें सवाल करते हैं बल्कि दूसरी क्लासेस के अंदर भी और अपने दूसरे भी मामलात के लिए वो AI को यूज़ करते हैं। अब इसका एथिकल यूज़ होना चाहिए, अब मकसद यह है कि हमारा हम आसानी की तरफ भागते हैं, इंसान हमेशा से आसानी की तरफ भागता है, लेकिन ये मालूमात या मैं लाइब्रेरी में चला जाऊँ और बहुत सारी किताबें हो तो अभी तक PK वाली कोई साइंस डेवलप नहीं हुई है कि वो कोई किसी को टच करे और उसके अंदर सारा इल्म ट्रांसफर हो जाए, तो इल्म हासिल करना तो खुद ही कर पड़ेगा, मैं अपना खाना मुझे खुद ही खाना पड़ेगा, कोई मेरे लिए खाना तैयार करके अच्छा करके वो मेरे सामने तो रख सकता है लेकिन अल्टीमेटली खाना मुझे ही खाना पड़ेगा। तो इसी तरह से मालूमात तो हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन उन मालूमात को समझना और उनके दरमियान में ताल्लुक पैदा करना और ताल्लुक पैदा करके कुछ मसाइल को हल करना, ये अब अहम ज़रूरत बन गया है। और AI के इस्तेमाल से हम ये काम कर रहे हैं और बहुत तेज़ी से लोग जो है वो कर रहे हैं, जैसे अमेरिका ने अभी $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है अरब के अंदर, आजकल UAE के अंदर आज के दिन AI वीक मनाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल नज़र आ रहा है और इसको जो जल्दी अडॉप्ट करेगा वो कुदरती तौर पर सीखना चाहिए, लेकिन सीखने का तरीकाकार नहीं बदलेगा। मतलब ये समझा जाए कि शायद AI खुद बखुद ही सिखा देगी, ऐसा नहीं होगा। AI की मदद से हमें सीखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। आज के दिन में जो सबसे अहम और कीमती चीज़ है वो सवाल पूछना है, कि आप सही सवाल पूछना शुरू करते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में सिर्फ 6 महीने का कोर्स करवाया जाता है जिसमें सिर्फ सही सवाल पूछने की ट्रेनिंग दी जाती है, और वही कोशिश हम कर रहे हैं यहाँ पर कि किसी तरह से बच्चों को सही सवाल की तरफ लगाया जाए, उनसे पूछा जाए कि कैसे काम चल रहा है।
1: जी सर, माशाल्लाह आप एक बड़े
2: सीरियस हो गया
1: नहीं सर, इसीलिए मैं पूछना चाह रही हूँ कि आप माशाल्लाह बड़े एक पैशनेट एक रिसर्चर के साथ साथ एक बड़े डेडिकेटेड टीचर भी हैं, तो हमारी क्लासेस के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं और कोई माशाल्लाह बहुत कोई रिसर्च में कोई आगे, कोई बड़ा नॉटी, कोई बड़ा शायसा, कोई बहुत, तो आप जो क्लास में कोई जो डल स्टूडेंट्स हैं जो आप फील करते हैं कि बड़े डाउन से बैठे हुए हैं,
2: मेरे लिए सबसे ज्यादा कीमती होते हैं,
1: उनको आप कैसे मतलब उनको कैसे एक्टिवेट करते हैं, आप कैसे उनको इंगेज करते हैं क्लास के अंदर?
2: उनके साथ उन जैसा थोड़ा सा बनना पड़ता है और वो बच्चे ज्यादा कीमती होते हैं। अगर हम देखें तो ये जो बैक बेंचर्स होते हैं ये बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, वो ये ग्रेड्स के लिए नहीं पढ़ रहे होते, ये आते हैं सीखने के लिए, ये आते हैं खेलने के लिए भी आते हैं, लेकिन अगर इनकी एनर्जीज को खेल खेल के अंदर पढ़ा दिया जाए। अब गेमिफिकेशन आ रही है, बहुत ज्यादा तालीम के अंदर भी चेंजेस आ रही है कि हम गेम्स के जरिए से भी बच्चों को खिला सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं उनको, कि भाई उनको थ्रो कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं उनको कि ये काम कैसे होगा, और वो फिर उनको तहकीक पे लगा सकते हैं, उनको असाइनमेंट्स ऐसी दे सकते हैं जो कि उनके लिए यूजफुल हों। तो वो जो एंगेज अमूमन खुद भी, पहले तो ये है कि उस्ताद को जरा उस्तादी से निकलकर आम बंदा बनना पड़ेगा, कि वो अपने आप को बहुत बड़ी चीज ना समझे, वो भी आपको अपने आप को एक तालिबे इल्म ही समझे। तो जब तालिबे इल्म बनकर ही उस्ताद अपनी क्लास में जाएगा तो वो फिर एक जो हेजिटेशन है स्टूडेंट की वो खुद ब खुद ही खत्म होगी। तो इसमें टीचर्स को भी थोड़ा सा रोल प्ले करना चाहिए कि वो उस्तादी के अपने आप को उस्ताद उस्ताद या सेलिब्रिटी बनाने की बजाय कोशिश करें कि बच्चों के लेवल पर आए और बच्चों से गुफ्तगू करें, और जैसे हम अपने बच्चों से घर पे गुफ्तगू करते हैं इसी तरह से इनको बच्चों को भी अपना बच्चा समझेंगे तो यकीनन उनके दरमियान में जो हेजिटेशन है वो खत्म हो जाएगी।
1: जी थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान कि आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी इन्फॉर्मेटिव और इतनी खूबसूरत बातें की हैं, और आई होप कि हमारे सामीन ने बहुत इन्जॉय किया होगा, बहुत चीज़ें आपसे लर्न की होगी। मैं खुद यहाँ पे बैठी हुई एज अ होस्ट आपकी बहुत मोटिवेट हो रही हूँ आपकी बातें सुन के। जी और इसके साथ ही अब हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, और अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त, और हमारा सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
3: आरजे फहद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड

0: मोहताज नहीं, वो ऐसे शायर हैं जिन पर शायरी खुद नाज करती है। इनकी अजमत को हर जमाने में तस्लीम किया गया है। इनकी शायरी नुजरत ख्याल, जिद्दत मजामीन, फलसफियाना अंदाज, दिलनशी और दिलावेजी के साथ साथ फिक्र के दिलचस्प पहलू भी रखती है। और इनका न सिर्फ मौजूआत शेर बल्कि असलूब बयां भी मुनफरिद और रंगारंग है। इनका नाम मिर्जा असदुल्ला खां गालिब था। शायरी के आगाज में कुछ अरसा असद को बतौर तखल्लुस इस्तेमाल किया, जिसकी जगह बाद में गालिब ने ले ली।
1: हमारे शेर में अब सिर्फ दिल लगी के असद खुला के फायदा अर्ज़े हुनर में खाक नहीं।
0: बचपन में ही वालिद का साया सर से उठ जाने के बाद गालिब के नाना ने इनकी परवरिश की। गालिब की जिंदगी का ये दौर आराम आसाइश और नाजो नाम का दौर साबित हुआ, लेकिन गालिब की आजादी और खुश फिक्री ज्यादा देर कायम न रह सकी। 13 साल की उम्र तक पहुंचते ही इनकी शादी नवाब इलाही बख्श खां मारूफ की साहबजादी उमराव बेगम से कर दी गई। गालिब आगरा से तरके सकूनत करके दिल्ली आ गए और मुस्तकिल तौर पर यहीं बस गए। दिल्ली उस जमाने में अहले इल्म और अहले कमाल लोगों का मरकज था। हर तरफ इल्मी और अदबी महाफिल बरपा रहती थी। गालिब बचपन से ही शायरी का शौक रखते थे और थोड़े अरसे बाद ही वो शेर कहने लगे। दिल्ली की अदबी फिजा ने गालिब के अदबी जौक को निखारा और परवान चढ़ाया। इब्तिदा में गालिब ने फारसी के मशहूर शायर मिर्जा अब्दुल कादिर बैदल की पैरवी की। इनका ये दौर मुश्किल पसंदी का दौर था, क्योंकि इस मुश्किल गोई को लोग समझ न सके। उर्दू के उस्ताद मौलाना गुलाम रसूल मीर फरमाते हैं कि गालिब वो वाहिद शायर हैं जिनकी शायरी दिलनशी और दिलावेज होने के साथ साथ ख्याल अंगेज और फिक्र अंगेज भी है। वो मामूली बात भी कहते हैं तो इसके अंदर कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है। माहिर उर्दू डॉक्टर अब्दुलरहमान ने इसे इल्हामी किताब का दर्जा दिया है और फरमाते हैं, हिंदुस्तान की इल्हामी कुतुब दो ही हैं, एक दीद मुकद्दस और दूसरी दीवान गालिब।
1: देखना किस्मत कि आप अपने पे रश्क आ जाए, मैं उसे देखूं भला कब मुझसे देखा जाए।
0: मिर्जा गालिब उर्दू और फारसी दोनों जुबानों के बेमिसाल और लाजवाल शायर हैं। अगरचे इन्हें अपनी फारसी दानी और फारसी गोई पर हमेशा नाज रहा और फारसी के मुकाबले में उर्दू कलाम को मजमुआए बेरंग करार देते रहे, मगर आज उनकी असमत पर हयात जावेद की वजह उनका वो मुख्तसर सा दीवान है जो उर्दू में है। गालिब गजल के शायर हैं और गजल दिल की धड़कनों को जुबान शेर अता करती है। मिर्जा की गजलें दिले इंसानी पर गुजरने वाले तमाम अहवाल और कवायफ का सच्चा और बेलाग इजहार है। गालिब की गजल अपने मनमोहे और दिलनशीन तर्ज़े अदा की वजह से पहचानी जाती हैं।
1: हाँ, वो नहीं खुदा परस्त, जाओ वो बेवफा सही, जिसको हो दीन और दिल अजीज उसकी गली में जाए क्यों।
0: मौलाना इल्ताफ हुसैन हाली ने यादगार गालिब में गालिब की सबसे नुमाया खूबी बयां की है, जिसे वो मजामीन शेर का नयापन करार देते हैं। मिर्जा गालिब जाती तौर पर किसी की तकलीद करना या किसी बने बनाए रास्ते पर चलने के रवादार न थे। इनकी मुनफरिद तबीयत इन्हें राह तलाश करने पर उकसाती थी, चुनाचे इनके आशार में नुजरत जिद्दत का एहसास होता है। वो ऐसे ख्याल को नज़्म करते हैं जो दूसरे के वहमो गुमा में भी न हो। मिर्जा गालिब के यहाँ मौजूआत ही अनोखे नहीं बल्कि इनको अदा करने और बात कहने का अंदाज भी अनोखा और निराला है। गालिब का तर्ज अदा भी नया और जदीद है। उन्होंने आशार कहने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए। मौलाना इल्ताफ हुसैन हाली के ख्याल में उर्दू के तमाम शेर कदीम मौजूआत मजामीन को मुख्तसर सी तब्दीली के साथ पेश कर देते हैं, मगर गालिब की जिद्दत पसंद तबीयत हमेशा नए अंदाज इख्तियार करने पर मजबूर करती है। गालिब के आशार में ऐसे आशार कसीर तादाद में मौजूद हैं जिनकी शरह तफसीर एक से ज्यादा मुख्तलिफ अंदाज में की जा सकती है। ऐसे आशार पहलुओं पर गौर करने से सामने आते हैं।
1: शमा बुझती है तो उसमें से धुआं उठता है, शोला इश्क सिया पोश हुआ मेरे बाद।
0: मिर्जा गालिब की शराफत के बायस इनको हैवान जरीफ भी कहा जाता है। अपनी जिंदगी में वो एक खुश तबा जिंदा दिल और यार बाश इंसान थे। बात बात पर जराफत की फुलझड़ियाँ छोड़ना इनका मामूल था। गालिब का जमाना जिन मुश्किलात से गुजरा इसमें बड़े बड़ों को जलाकर रख दिया, मगर गालिब की खुश तबई और जिंदा दिली है कि वो अपने आप पर हंसते और मुस्कुराते रहते।
1: मेरे इबहाम पे होती है तसद्दुक तौजीह, मेरे अजमाल से करती है तरश्शुह तफसील।
0: مرزا غالب نے جس

0: WHO की हालिया तहकीकात के मुताबिक पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन अफराद आंखों के मसाइल से दोचार हैं। लिहाजा आप भी एहतियाती तदाबीर अपनाकर अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए। अपनी आंखों को गर्दो गुबार और आलूदगी से बचाएं। कंप्यूटर पर काम करते हुए मुसलसल आंखें कंप्यूटर पर मरकूज ना रखें। आंखों का बाकायदगी से मुआयना करवाएं। बच्चों को नोकीली चीजों से हरगिज न खेलने दें। मोबाइल के बेजा और मुसलसल इस्तेमाल से गुरेज करें और घर आते ही फौरन आंखों को ताज़ा और ठंडे पानी से धोएं। इसके अलावा खाने में मुतवाजन ग़िज़ा और विटामिन ए से भरपूर खुराक इस्तेमाल करें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से पेश किया जा रहा है।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

अनचाही कॉल या पैगाम की शिकायत के लिए मुतालिका फोन नंबर्स के हमरा 9000 पर SMS करें। गुमनाम नंबर से आने वाली कॉल्स या SMS के जवाब में अपनी खुफिया जाती मालूमात हरगिज ना दें।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

प्यार। इसके बाद नूरजहां ने 1960 से 1970 तक के अश्रे में पंजाबी फिल्मों के लिए गाने गाए जो सुपरहिट हुए, और इनमें से बहुत से गीतों का शुमार सदाबहार गीतों में होने लगा।

नूरजहां ने 1000 फिल्मों के लिए गीत गाए जिनमें से ज्यादातर मकबूले आम हुए। नस सदी से जायद अरसा तक मौसीकी की सल्तनत और करोड़ों सामईन के दिलो दिमाग पर हुक्मरानी करने वाली मलका तरन्नुम नूरजहां की शख्सियत के हवाले से एशियाई लेजेंड दिलीप कुमार की अहलिया और माजी की मारूफ अदाकारा सायरा बानो का कहना है, मलका तरन्नुम नूरजहां ने प्लेबैक सिंगिंग में जो उसलूब व अंदाज वजा किया वो फिल्मी मौसीकी का लाजमी जुज बन गया। उन्होंने कहा कि दिलीप कुमार अक्सर ये बात करते हुए मलका तरन्नुम का तस्करा करते हैं तो कहते हैं कि दुनिया में फिल्म और म्यूजिक रिकॉर्डिंग की इजादात को मुतारिफ हुए अभी थोड़ा अरसा हुआ था, इसलिए इस तकनीक को सीखने के लिए ना तो इंस्टीट्यूशन से और ना ही फनकारों की ट्रेनिंग का अहतमाम। हैरत अंगेज अमर ये था कि नूरजहां ने इस दौर की जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत हासिल किए बगैर जो काम किया वो आज भी अनोखा और मुनफरिद।

भारत की लेजेंड गुलूकारा लता मंगेशकर ने जब गुलूकारी के मैदान में कदम रखा तो वो मलका तरन्नुम नूरजहां के साथ कोर्स में गाया करती थी। वो सचमुच में इन्हें अपनी बड़ी बहन मानती थी और इन्हें बड़ी फनकारा भी तस्लीम करती थी। एक बात तो तय है कि कुदरत ने जो आवाज और सुर मलका तरन्नुम नूरजहां को दिया वो किसी दूसरे के पास नहीं।

मेरा माही चैन शरीरा, जिंदा है लाहौर, पाइंदा है लाहौर। ए पुत्र हटा दे नई विगदे, की लब दे फिरी बाजार कुड़े। मलका तरुण ने अपने मिली नगमों से वतन की हिफाजत करती हुई गयूर कौम को पैगाम दिया। सियालकोट तू जिंदा रहेगा, तू जिंदा रहेगा, मेरा सोहना शहर कसूर नी। रब दिया रखा, ये वो गीत थे जिन्होंने पाक अफवाज के हौसलों और जज्बों को बढ़ा दिया।

1986 में जब वो शुमाली अमेरिका के दौरे पर थी तो इन्हें सीने में दर्द की शिकायत हुई। डॉक्टर्स ने एंजाइना की तकलीफ बताई, जिसके बाद इनकी सर्जरी की गई। सन 2000 में कराची में इन्हें दिल का दौरा पड़ा, जो जानलेवा साबित हुआ। यूं ये दिलकश आवाज 23 दिसंबर सन 2000 को अपनी महक यहीं छोड़कर हमसे हमेशा के लिए दूर हो गई।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, की दुनिया। ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, की दुनिया।

0: मैं काम करके थक जाती हूँ।
1: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
2: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीनें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इत्तला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर राब्ता करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।
3: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

जब भारत के बड़े बड़े मौसीकारों ने खान साहब को कॉपी करना शुरू किया तो बिलाआखिर वो खुद मैदान में उतर आए। माइकल ब्रूक के साथ कामयाब तजुर्बात के बाद रेमिक्स म्यूजिक स्टार बाली सागू के साथ भी फ्यूजन किया, जिसने बिजनेस के रिकॉर्ड कायम किए।

Fun, entertainment, news, knowledge, 24/7, only on UCP FM 92.6, UCP की दुनिया।

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: 24/7 only on FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: कहीं फिर से रहमो चाचा अपना डांगा लेकर ना आ जाए, वो मुझे अपनी गोद में बिठाएंगे। मैं अम्मी को भी बताने से डरती हूँ।
1: आमतौर पर यही समझा जाता है कि बच्चों के साथ जिनसी बदसलूकी सिर्फ अजनबी करते हैं, मगर ऐसा नहीं है। दरअसल ये वो लोग होते हैं जिन पर माँ बाप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। बच्चों को समझाएं, चाहे अपना हो या पराया, इनकी मर्जी के खिलाफ कोई इन्हें छुए तो आपको फौरन बताएं। जिनसी बदसलूकी के बचाव के लिए बच्चों में अपनी हिफाजत करने की समझ बूझ पैदा करें। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जिस्मानी और नफसियाती हक फराहम करता है। तहफ्फुज़ हर बच्चे का हक है, आए इसे यकीनी बनाएं। मजीद मालूमात और मशवरे के लिए हेल्पलाइन 1099 पे कॉल करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: मुझे नहीं करना कोई काम।
1: मां तंग थी वा रोज रोज जी झगड़न का हाने यू न लदो।
2: परेशान न थी दोस्त, ही वट इन जो हिक्की कश तुझी हर परेशानी दूर करे छरिंदो।
1: नशो परेशानी जो हल ना है।
2: दोस्त आया तुझो वठ लगाए कश।
1: तू मुझो दोस्त नथो थी सगी। दोस्त सुठा मशवरा दींदा इन, हौसलो दींदा इन। नशो न मुझो फैसलो, नशो हरगिज न।

ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

सुरौरतान सुरौरतान ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: न्यूज।
1: मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
2: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरी को होस्ट
3: आरजे फाद कुरैशी।
4: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस,

0: ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया, यूसीपी की दुनिया।
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: डेंगू मच्छर पानी में जन्म लेता है, इसकी अफजाइश के मराहिल से मुकम्मल आगाही डेंगू के खात्मे के लिए जरूरी है। लिहाजा पानी की टैंकी और ड्रम वगैरह जिनमें साफ पानी हो अच्छी तरह ढांप कर रखें। इसके अलावा घर, दफातर, दुकानों और किसी जगह कूड़ा करकट या फालतू अशिया जमा ना होने दें। घरों में मच्छर मार और लार्वा कश केमिकल का स्प्रे करवाएं। इस्तेमाल शुदा बोतलों, प्लास्टिक के थैलों और इस्तेमाल शुदा टायरों में हरगिज पानी जमा ना होने दें। माहौल खुश्क और साफ, डेंगू से मुकम्मल निजात। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के तआवुन से पेश किया जा रहा है।

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।
4: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो यूसीपी की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। Keep your ears healthy with FM 92.6.
5: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में वो सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
4: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया।

नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मनशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: अब्बा, मैं भी भाई की तरह स्कूल जाऊं।
1: अपनी बेटियों को पढ़ाएं, बेटियां पढ़ेंगी तो अपने पैरों पर खड़ी होंगी, खुद मुख्तार होंगी, समझदार माएं बनेंगी, सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि सारे कुंबे की जिंदगी बदलेंगी, आगे की नस्लें संवारेंगी। पाकिस्तान का आईन और कानून हर लड़की और लड़के को मुफ्त तालीम का हक फराहम करता है। बेटियों को पढ़ाएंगे तभी तो हम आगे जाएंगे। मजीद मशवरे के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप पर राबता करें। वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।
1: दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय फैकल्टी ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया, आपकी समातों से टकराती ये आवाज UCP की दुनिया FM 92.6।